0: everybody.
1: Hi!
2: Smashing! Groovy! Fab!
3: Terrific! Fantastic! What a beaut!
4: ये तो टाइम टाइम की बात है जॉनी, टाइम टाइम की बात।

0: करायची आहे? मग निवडा विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक. 7 दिवसापासून 18 महिने आणि त्यापुढील कालावधीसाठी एफडी सुविधा. व्याजदर 3% ते 7.25% ज्येष्ठ नागरिक आणि रुपये 15 लाखावरील ठेवींना अतिरिक्त 0.50% व्याज आणि खास 499 दिवसांची स्पेशल एफडी योजना 7.75% व्याजदरासह. तेव्हा आजच भेटा आपल्या जवळच्या विश्वास बँक शाखेला. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9130002088. विश्वास बँक, विश्वासाचे नाते.
1: कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता. मैं यह लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है. मैं हार गया हूं छाया.
2: सुधीर.
1: हां छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है. सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया. इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए.
2: मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी.
1: झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे. घर बना लोगी, कपड़े के लीर का दिया जलाओगी और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया. हाथों में पेट लिए घूमोगी तुम और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा. इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत देखा है ऐसे पीले चेहरों वाला आदर्श.
2: तुम निराश होगी सुदीप, मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा.
1: हाँ, विश्वास, विश्वास. तुम्हें विश्वास है ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा? है, एक रास्ता है. हाँ छाया, मैंने भी अपनी सीढ़ी चुन ली है. मोदी.
2: मोदी?
1: तुमसे शादी करना चाहता है ना? कर लो शादी. समझने की कोशिश करो छाया, कितने दिन जिएगा और कितने दिन जी सकता है? हाँ छाया, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा. सिर्फ इसके बाद ही हम लोग अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं.
2: छे, किसी की कब्र पे अपना घर बनाऊंगी.

0: सदानंद।
1: मैं अकेला रह गया चाचा जी, दीदी चली गई अपने घर, मैं अकेला रह गया।
0: अकेला मैं जो हूं तेरा बेटा, तूने एक सन्यासी को संसारी बना दिया, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा।
1: चाचा जी।
0: बेटा तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, तेरे हाथों से देश के बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं।

0: तखलिया, इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखल अंदाजी हरगिज हरगिज पसंद नहीं।
1: इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
0: सुना तुमने, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
1: देखते क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे।
0: देखते क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मुझे यही रखना चाहती है।
1: क्या,
0: इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में? अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माता जी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है।
1: बदतमीज।
0: शुक्रिया। अजी सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखेगा, फिर आके ले जाऊंगा।
1: मारो इसे।
2: स्वतःचा रिसॉर्ट, होमस्टे, ट्रॅव्हल एजन्सी किंवा पर्यटन व्यवसाय सुरू करण्याचं स्वप्न आहे? मग विश्वास बँक घेऊन आली आहे महिलांसाठी पर्यटन व्यवसाय कर्ज योजना। रुपये 15 लाखांपर्यंत कर्ज, 5 ते 7 वर्षांची मुदत आणि विश्वासाची साथ। जरूर संपर्क साधा प्रेमचंद तायडे, 96 0417 98 61 आणि गणेश सोमवंशी, 83 800 16 508। महिला उद्योजकांसाठी विश्वासाची साथ।
3: मुकद्दर में

बस थोड़े ही दिन में वो बंद कली खिल जाएगी, मुझको बीवी, मुझको बीवी, मम्मी डैडी।

0: फिर उसके बाद
1: अरे अरे भाई अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठो, हमें कानून के हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी।
2: देश द्रोहियों की हम चमड़ी उधेड़ देंगे।
1: ये शब्द तुम मत बोलो तो फिर कौन बोलेगा?
3: वो बोलेगा।